0: परम पूज्य गुरुदेव जगत पिता स्वामी के इस वैकुंठ धाम में उनके समक्ष उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हुए आज आपसे हम सभी प्रेम पर्व होली महोत्सव का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व जानना चाहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस पर्व में समाज के हर वर्ग तमाम भेदभाव भूलकर आपस में प्रेम डोर से बन जाते हैं, एक अति सुखदायक भाव में रंग अबीर गुलाल का आनंद उठाते हुए सर्वत्र वसुधैव कुटुंबकम का नजारा दिख पड़ता है, पूरे बिहार में तो बहार आ जाती है।
1: परम प्रिय छात्र छात्राओं, सचमुच तुम सभी महान भाग्यशाली हो। युगावतार स्वामी की अखिल विश्व के साथ साथ बिहार राज्य पर भी बड़ी कृपा है। प्राचीन शास्त्रों में कल्प भेद से होली महोत्सव की विभिन्न चर्चाएं अंकित हैं। शास्त्रकारों के अनेक मत भी हैं। मैं यह संक्षिप्त में तुम्हें मूल विषय की जानकारी दे रही हूँ। सतयुग में एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक पहुँचे। प्रभु कक्ष के आगे तैनात द्वारपाल जय और विजय से ऋषि ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। चूँकि सनकादि ऋषिगण प्रभु से प्राप्त वरदान स्वरूप हमेशा किशोरावस्था में ही दिख पड़ते हैं, अतः दोनों द्वारपाल सबों को एक जैसा छोटे उम्र में देख दर्शन से वंचित करते हुए लौट जाने को कहा। ऋषिगण यह आग्रह करते रहे कि हमारे आने का संवाद प्रभु के चरणों तक पहुंचा दीजिए, वे जो भी आदेश देंगे शिरोधार्य है। ऋषिगण की अवहेलना कर दोनों द्वारपाल अपने हट पे डटे रहे। अंततः क्रोध में आग बबूला होकर ऋषिवर दोनों द्वारपालों को श्रापित कर दिए। जगत पिता को तो आगे कुछ और ही लीला करनी थी। ऋषि ने कहा, रे हठी अहंकारी द्वारपाल, तुम दोनों अगले 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ तथा हरि विमुख होकर पतित जीवन व्यतीत करो। निज भूल का बोध होने पर दोनों द्वारपालों ने नतमस्तक हो क्षमा मांगते हुए उद्धार की याचना की। दयालु ऋषि ने पुनः कहा, ठीक है, 3 जन्मों तक आसुरी योनि भोग लेने के बाद पुनः दोनों भगवान के दरबार में नियुक्त हो जाओगे तथा पूर्व की भांति हरि कृपा मिलेगी। तीनों जन्मों में प्रभु ही अवतार लेकर तेरा उद्धार करेंगे। वृथा न होई देव ऋषिवानी। श्रापवश दोनों सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण तथा द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। तीनों युगों में दोनों ने अपनी आसुरी चरित्र से जगत जीव को आहत करते हुए अति कष्ट पहुंचाया। ऋषिवाणी स्वीकार कर भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को गति दी। बच्चों, अब तक की पौराणिक चर्चाओं पर चिंतन मनन करते हुए पुनः एक मधुर भजन गाकर परम पूज्य स्वामी को प्रसन्न करो।

0: प्रसन्नता। इस दिव्य माहौल में तो सचमुच ऐसा लग रहा है कि स्वामी तुम सबों पर आशीष की वर्षा कर रहे हैं। अब ध्यान से आगे सुनो। वराह भगवान के द्वारा जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया तो हिरण्यकश्यप को भ्राता के निधन से अति क्रोध तथा आत्मग्लानी हुई। प्रतिशोध की भावना से उसने एकांत वन में जाकर घनघोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और मनोइच्छित वरदान मांगा कि प्रभु मुझे संसार का कोई प्राणी मार ना सके, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न भीतर हो न बाहर, न पृथ्वी पर हो न आकाश में, कोई भी अस्त्र शस्त्र का असर मुझ पे ना हो, युद्ध में कोई मुझे पराजित ना कर सके, मैं समस्त जगत का एक छत्र सम्राट हूँ। ईश्वरीय प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। सचमुच ब्रह्मा जी के वरदान से वह सबों पर विजय प्राप्त कर भूमंडल का सम्राट बन बैठा और मनमाना जघन्य अत्याचार करते हुए सबों को महाकष्ट पहुंचाने लगा। जगत जीव तथा समस्त देवगण त्राही त्राही करते हुए भगवान को पुकारने लगे। प्रभु तो सब देख ही रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, अब होली महोत्सव संदर्भ का दृश्य सामने आ रहा है, ध्यान से सुनना। जब हिरण्यकश्यप घनघोर जंगल में तपस्या के लिए चला गया था तो मौका ढूंढकर देवराज इंद्र अपनी सेनाओं के साथ अकस्मात आक्रमण कर समस्त असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। असुर के राजभवन में प्रवेश कर वलात हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया तथा देवलोक ले जाने लगे। हर इच्छा से रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद जी से हो गई।
1: नारायण नारायण, हे देवराज, इतने व्यस्त स्थिति में आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके साथ ये महिला कौन है? आपके अंग रक्षकों को भी परेशान देख रहा हूँ।
2: देवर्षि, आपको कोटि कोटि नमन। मैं एक बहुत बड़ी सफलता का संवाद सुना रहा हूँ। यह महिला कयाधु महापापी हिरण्यकश्यप की पत्नी है। राक्षसों को पराजित कर इसे देवलोक ले जा रहा हूँ। वहाँ इसे विविध प्रताड़ना दी जाएगी जिससे अत्याचारी राक्षसों को भी सीख मिल सके।
1: हे देवराज, ऐसी भूल आप कदापि न करें, अन्यथा गलत परिणाम होंगे। कयाधु अभी गर्भवती है, उसके उदर में पल रहा बालक भगवान का अनन्य भक्त है। वह जन्म लेकर बचपन से ही भक्ति मार्ग अपनाते हुए प्रभु के ऐश्वर्य को समस्त भूमंडल में फैलाएगा। उसके निमित्त ही प्रभु अवतरित होंगे तथा आसुरी शक्ति का अंत करेंगे। अतः इसे मेरे आश्रम में ही छोड़ दीजिए, मैं हरी इच्छा से सब देख लूंगा।
2: हे देवर्षि, मैं सब समझ गया। आपकी आज्ञा शिरोधारी है। कयाधु को अब आपके स्त्री चरणों में छोड़ता हूँ।
1: नारायण नारायण।
3: जन्म से ही प्रहलाद भक्ति गंगा में स्नान करते हुए अपने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का अनन्य भक्त हो गया। वह अपने बाल मित्रों के साथ घूम घूम कर प्रजाजनों को हरि भजन का अभ्यास कराने लगा।

0: खबरदार नालायक, बंद करो ये सब नाटक। आवारा बालको, तुम्हें मेरा कुछ भी भय नहीं। मेरे लाख समझाने के बाद भी आदेश की अवहेलना कर रहे हो। मैंने जब कह दिया कि मैं विष्णु से अधिक सामर्थ्यवान हूँ, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरा भजन करो, उसे छोड़ो, लेकिन तुम लोगों के अंदर इसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। उल्टे धृष्टता किए जा रहे हो, तो कठिन दंड के लिए तैयार हो जाओ। आदेश की अवहेलना करने वाले को मैं एक से एक पीड़ा देकर तड़पाते हुए यमलोक भेजता हूँ।
1: परम पूज्य पिताजी, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे क्षमा करे, मैं तो बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं जिनका भजन कर रहा हूँ, उन्हीं से तो आप समस्त दुर्लभ वरदान प्राप्त किए, किंतु अहंकार वश अज्ञानता का शिकार हो खुद को ही सर्वस्व मान बैठे हो। मार्ग भी बिल्कुल गलत अपना चुके, आगे इसका परिणाम क्या होगा, इस पर आप कभी विचार ही ना किए। पिताजी, यह ना आपके हित में है, ना प्रजाजनों के ही।
2: जगत के निर्माता, पालन करता तथा संहारक एक परमेश्वर ही है।
3: अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते।
1: अतः प्रभु, भक्ति मार्ग पर चलने में ही सबों की भलाई है। मैं आपका संतान हूँ, अतः मेरी बात पर अमल करे पिताश्री।
0: मूढ़ बालक, दो दिनों का छोकरा मुझे ही शिक्षा देने लगा। तुम सचमुच कठोर दंड के ही भागीदार हो। महामंत्री जी, आप इसकी नालायकी देख रहे हैं ना? अब मेरा आदेश है कि शीघ्र ही जल्लाद को बुलाकर इस अधम को कठोर से कठोरतम दंड देते हुए यमलोक भेज दिया जाए। मैं तभी चैन की सांस लूंगा।
1: हे पिताश्री, आपको जो भी दंड देना हो उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा है। देव ऋषि नारद जी के सत्संग में मैंने सुना था।

0: इतना ही नहीं, भगवान के भक्तों के लिए तो यह चरितार्थ होता देखा गया है।
1: गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई।

0: हिरण्यकश्यपु के आदेशानुसार जल्लादों के द्वारा प्रहलाद को पकड़कर ऊंचे पर्वत से फेंक दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया। विषधर सर्प से डसवाया गया, सारे शरीर में सूली चुभाई गई, समुद्र में डुबो दिया गया तथा उसके अलावे भी अन्य कई एक असह्य दंड दिए गए, परंतु कहीं भी भगवान की प्रत्यक्ष कृपा से उसका बाल बाका न हुआ। स्वामी सर्वत प्रत्यक्षता ही उसकी रक्षा करते रहे, हरि भक्ति में कोई भी बाधा उसे आहत न कर सकी। समस्त देवगण तथा जगत के प्राणी इन सभी प्रत्यक्ष घटनाओं को देख भक्त और भगवान का गुणगान करने लगे।
1: महामंत्री वर, ये महान आश्चर्य का विषय है कि नीच प्रहलाद को एक से एक प्राण घातक दंड दिए गए, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे मुझे देख प्रसन्न होकर हरि भजन कर ही रहा है। मैं तो आत्म गलानी से मरा जा रहा हूँ, दंड की अब कौन सी युक्ति अपनाऊं, आप अपनी राय दीजिए।
2: राजन, आप चिंता ना करें, एक अचूक उपाय और शेष है। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि को आपके द्वारा संचालित मदनोत्सव में आपकी छोटी बहन सिंगिका अग्नि के ढेर में बैठ समस्त प्रजाजन को बिना जले ही निकलकर चमत्कार दिखाती है। चूंकि सिंहिका जी को तो अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त है, तो इस बार ऐसा किया जाए कि प्रहलाद को फुसलाकर साथ ही में दीदी बैठा ले। वरदान में प्राप्त अंग ओढ़े रहने से सिंहिका जी बच जाएगी, अग्नि से बाहर निकल आएगी और प्रहलाद वहीं पर जलकर राख हो जाएगा। हे राजन, यह तिथि कल ही तो है।
0: नियत तिथि एवं समय पर भक्त प्रहलाद को साथ लेकर तथा सिर्फ स्वतः अंगवस्त्र ओढ़कर अग्नि ढेर के ऊपर सिंहिका सहर्ष बैठ जाती है। इतने में भगवान के आदेश से पवन देव के द्वारा सिंहिका के शरीर पर से चादर उड़कर भक्त प्रहलाद को ढक लेता है तथा सिंहिका जलकर राख हो जाती है। प्रहलाद प्रसन्न मुद्रा में प्रभु नाम स्मरण में लीन है। जब समस्त अग्नि बुझ जाती है तो प्रत्यक्ष स्थिति देख हिरण्यकशिपु बहन के वियोग में छाती पीट लेता है एवं भयंकर गर्जना करते हुए हाथ में नंगी तलवार लेकर सामने कूद पड़ता है।
1: रे विष्णु, तुम्हारा सारा खेल देखते देखते आंखें पसरा गई। अब मेरे सामने आ और मुझसे युद्ध कर, अपनी शक्ति दिखा। आज ही अंतिम फैसला हो जाएगा कि तू बड़ा है या मैं। तेरे भक्त की तो बोटी बोटी नोच कर अभी खा जाऊंगा।

के ढोंगी, अब बुला अपने भगवान को, मैं देखता हूँ वो छलिया आता है या मेरे भय से कहीं छिप जाता है। मैं अभी तुम्हारा सर घर से अलग करूँगा।

इतने में खंभा फटकर दो टुकड़ा हो जाता है। उस मध्य एक भयंकर रूप धारण कर भगवान प्रकट होते हैं, जिनका सर सिंह का तथा धर नर का। वे नरसिंह देव गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यपु का गर्दन मरोड़कर अपनी गोद में बिठाकर नख से उसकी छाती फाड़ डालते हैं। वह उनकी गोद से लुढ़क कर वहीं नीचे धराशाही हो जाता है। उसकी आत्मा प्रभु में विलीन।

0: हे मेरे प्यारे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मेरे आने में देर हो गई। मुझे बहुत पहले ही इस पापी का अंत कर देना चाहिए था। तुझे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े।
1: हे जगत पिता, हे पालनहार, हे मेरे सर्वस्व, आपको कोटि कोटि वंदना। आपके आने में कुछ भी देर कहाँ हुई प्रभु, आप तो मेरे हृदय में सतत विराजित होकर हमेशा हर दुस्सह विपदा से मेरी रक्षा करते ही रहे। मेरे चलते आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना अपमान का घुट पीना पड़ा, परंतु मेरी रक्षा में इन सबों की परवाह न करते हुए आप हमेशा तत्पर ही रहे। अतः हे करुणादान, मैं किस विधि आपकी स्तुति करूं?
0: बेटे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे निश्चल भक्त का निवास तो हमेशा मेरे हृदय में रहता है। अभी तुझे जो भी मांगना है, मैं वह सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम्हें इच्छित वर प्रदान कर मुझे अति प्रसन्नता होगी।
1: प्रभु, अपने चरण को अविरल भक्ति एवं सतत पावन छत्र छाया प्रदान कर तो आपने सब कुछ दे दिया। बस यही जन्म जन्मांतर अक्षुण रहे। मेरे सर्वस्व, अब बस एक ही याचना है, मेरे जन्मदाता पिता को उनके समस्त अपराध को क्षमा करते हुए हमेशा के लिए अपने लोक में स्थान दे दे। तभी मैं पितृऋण से उऋण हो सकूंगा
2: और मेरी स्नेहमयी माँ को अपने पावन चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करे।
0: हे महाभाग, तुम्हारा हृदय अति पवित्र और धन्य है। तुम्हारे पिता का उद्धार तो उसी वक्त हो गया जब उसे तुझ जैसे दिव्यात्मा संतान की प्राप्ति हुई। वह तो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए मेरे हाथों का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हो गया। ये सारे कृत्य तो सनकाद ऋषि श्राप के अनुरूप संपन्न किए जा रहे हैं। तुम्हारी माँ तो अति पूजनीय मेरी अनन्य भक्ता है। तुझ जैसे संतान पाकर तो उनकी कोख धन्य हो गई। अतः हे मेरे लाल, उन दोनों की ओर से हमेशा बेफिक्र रहो। हे दिव्यात्म स्वरूप लाड़ा, आज से तुम विश्व में भक्त शिरोमणि कहलाओगे। तेरी विमल भक्ति का गुणगान चारों युगों में होगा। इस ऐतिहासिक घटना में तुम्हारी बुआ सिंहिका भी अपने आप को आहूत कर दी। अतः आज से वह सिंहिका नहीं होलिका के नाम से विश्व विख्यात होगी तथा यह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की तिथि एवं चैत कृष्ण प्रतिपदा होलिका के नाम पर ही होली पर्व के रूप में विश्व प्रसिद्ध होगा। आज के दिन ही हर वर्ष लोग होलिका दहन तथा उस अग्नि भस्म का वंदन करेंगे एवं तमाम भेदभाव भूलकर सभी लोग मेरा भजन गायन करते हुए रंग अबीर गुलाल से आपस में प्रेम सद्भाव की वर्षा करेंगे, जिससे मेरी कृपा बनी रहेगी। यह दिवस प्रेम पर्व होली के रूप में विख्यात होगा।

प्रिय शिष्यगण, अब होली पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझो। जगत में सांसारिक मोह माया से ढका जीव ही सिन्हिका है। जब तक वह भगवत भक्ति का अंग वस्त्रम ओढ़े रहती है, तब तक खड़ विकार रूपी अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और ज्यों ही जीव से भक्ति का चादर हट जाता है, तो उसे खड़ विकार रूपी अग्नि ही जलाकर भस्म कर देती है। जब उसके सारे खड़ विकार जलकर भस्म हो जाते हैं, तो जीव सिंहिका से होलिका रूप में परिणत हो जाती है। होलिका अर्थात पवित्र हृदय, और जो मानव शरीर में आकर तुम्हारे जैसे भगवत भक्ति मार्ग पर चलते हुए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा को अपना जीवन आधार बना लेता है, उसके जीवन में सद्गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान की अग्नि से सारे खड़ विकार जलकर भस्म हो जाते हैं, और वह प्रेमा भक्ति रूपी अंग वस्त्रम को धारण किए एक आदर्श जीवन यापन कर प्रभु से एकाकार हो जाता है। चहुं ओर उसकी कीर्ति गाई जाती है। वह जीव शिव स्वरूप हो जाता है। उसे कणकण में ईश्वर की सत्ता ही दिखाई पड़ती है, तथा सतत भगवान की छत्र छाया तले वह मानव से माधव बनकर प्रभुमय हो जाता है। अतः अपने परिजनों के साथ हमेशा प्रेमा भक्ति मार्ग पर चलते हुए परमानंद में लीन रहो। बच्चों, अब हम सभी स्वामी के चरणों में होली महोत्सव का आनंद प्राप्त करें। जय साईं राम।

बेसुमार बेअंत बढ़दाता मने ही रहो पेख प्रभु कहो। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु कहो। गुर प्रसाद नानक मन वसिया।

अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानके अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बकों शुभ रसना दीजे प्राण्या कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं आन उपावना जीवत मीना बिरजल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण दुआरे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परणी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसै हर सेवा निश्चल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलियो मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन को तायो रतन राम कढ़ी के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जय श्री महला नावा हर जू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो उरे अंतर सरन गही कृपा निध तेरी रहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोनो करत पाप अभारा पै मरबे को बिसरत नाहनो तह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दे दिसको उठताया कट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार पर्यो शरणागत अपै दान प्रभ दीजै जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा
पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा। नानक सरन पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जवैत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हों तिस आगे मन डेहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा फिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बहां पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगण ना पिछा।

लोको गृह रचनाया पारंग मन बिला स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा क्रम है मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत ने है सो साई जय विसरै नानक सो तन खे है पौड़ी सुंदर से जानेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राजरस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसन अरचंत मूड अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया।

नाद परंकह बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसंबास का मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्शया गावै सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम यचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक नाथी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच धनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्स मन चाओ लै जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सका पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण है सरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया रख लेवो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास।

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, एक हजार हो गए, दस हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधदे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता कहिंदा वाह, बड़िया बड़िया कीमती चीजा मेरे खुदा तू छुपा के रखी है ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब है। सिफर इतने हो गए हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला फड़ी बड़े कीमती पत्थर दी मोतियां वाली माला घुमांदा घुमांदा इहदे मन में आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दिता है, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा किया है। बोलो सिरे, मैं आ गया, क्या कर लिया, वही मैं।